संख्या 32 के हुई। बागमती का 654 के लागि सहभागी हुए। तामझाम पनि एसियाका पदक विजेतालाई पुरस्कार वितरण। नेपाल युद्ध टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपमा रुबिन

0: ही सेवा यूं देखा हुआ पहले बुरा था जो संकलन करेगा उत्तीस पन्ने प्रदान कर रहे पन्ना दिन में दूध को पैसा भुगतान होने दूध पनीर दही क्रीम छुट्टी आइसक्रीम खुआ का दूध देने सामग्री बिक्री हो अभी पशु को दाना माछा को दाना औषधि जान चक्कर विषादी बीव बीजन मर्खा तथा किसको सभी उपलब्ध छ। सुन्नुहोस् न भाई, तपाईँको पशु बिरामी भयो भने घरमै गएर उपचार गरिनुका साथै आर्थिक सल्लाह पनि दिइन्छ अनि पशु तथा भरिदिमा अझ गोबर परीक्षण तथा माटो परीक्षणको सुविधा पनि छ।
1: किसानले
0: सुविधा रहेछ।

0: हस्ते अवसर के अनुसार वहाँ से शुरू कर देगी धर्मेश मित्र भय जरा सब ठंडा पत्ता
1: Yes.

0: आनंद करना वाला पहला चीज पच्चीस परसेंट श्रेष्ठ नहीं बढ़े
1: हमारे यहाँ मेरे जातक को प्याज बिजय गौतम एलियन त्रिपुटी जातक को प्याज का नाम बस्ती केरल उपयोग संग घातक दिया के पालिका अवसर का मौसमी तथा बेमौसमी उन्नत तथा हाइब्रिड जातक तीन आता दिया के पालिका
0: सरसरा यूरिया डिफिकल्ट पोटास सीडियम मुर्गी का खाना पशु आहार कृषि औजार किराने का सामान तथा पुस्तक वगैरह पालिका
1: अपने मुर्गी पढ़ना योजना बना रखी तरह से मुर्गी बच्चा के अगर अनुसार को पालिका
0: प्रोग्राम कृष्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रक्रिया
2: Thank you.

0: चाहता हूँ।
1: इस पर एक्सप्रेस के बाद
0: दुर्घटना भर भाटिए को दर्द तथा मुख को हड्डी को उपचार
1: मुक्तना
0: का उपचार सेवा हार्ट में मृत्यु होने को तस्वीर उपचार सेवा।

0: समाधान लागू पर्याप्त होइन। लागू पदार्थबाट हामी टाढा बस्छौँ, स्वस्थ र उज्यालो भविष्य
1: रोजौँ।
0: अपने खेती बाड़ी में समस्या पड़ रहा है, पर जरा न

चली पासवर्ड भी निर्धारण भुगतान बंद होना दिखाई देगा। 13 वर्ष इक्कीस या बाद में नहीं आएगा। देखो इस पासवर्ड को मेरे टेंडर के लिए विजयादशमी दीपावली तथा छठ पर्व को कामना पसंदा आपका संपूर्ण सेवा ग्राहकी इष्ट मित्र तथा आपका प्रजा भगवान शुभकामना सहित यह भी की 2083 और शुद्ध 25 प्रतिदिन कार्तिक 29 प्रति छठ पर्व समूह संपूर्ण बजार में 20% छूट निःशुल्क चेक जांच को व्यवस्था रहेको छ।

होटल पूरे नगर पालिका गांव को मुक्त करने आकर ऐसी लाल प्रधान लोगों प्रणाली लापति लाखों रूपया असल के गृह स्थानीय कर चलने बाटा सरकार 2065 साल में उपलब्ध करेगा सतह को प्रमाण लाल प्रधान लोगों बनाए सभापति प्रति व्यक्ति हजारों रूपये उठे स्थानीय वहां पर कार्यरत बाटा तर लोगों लाल प्रधान बनाए पाठक जनता बिक्री करना तथा बैंक को प्रकृत मिटो विवरण पाठ स्थानीय ब्रह्म पार्टी नगर फिर

सरकार के नाम बजे नाम पर भाषा तो बना रहा पूजा बनी रखा था ये स्थानीय

शिक्षा मंत्री खाद्य तथा नत्ता को बड़ा स्थान दिया बाकी इसको क्लब प्रण इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉन का साझेदारी तथा राजपूर्ण नगर पालिका समूह और सहकार्य में संचारी सुरक्षा परियोजना अंतर्गत उस उद्घाटन कराई गया हुआ राजपुर नगर पालिका वा नंबर 2, 3, 5 और 8 कई आर्थिक तथा सामाजिक रूप में कमजोर तथा विभिन्न परिवार का बागवानी का मुखर्ज लक्ष्य सहयोग सामग्री वितरण कर बागवानी का दैनिक जीवन यापन सहज बनाकर संग्रह मुकाम पर नियमित रूप में विद्यालय जाए और अपने पाठाना निरंतरता दिए पुरस्कार से कला उद्देश्य सहयोग उपलब्ध करो और सहयोग समिति राजपुर नगर पालिका नगर प्रमुख दीपेश ठाकुर संबंधित परिवार में बागवानी का मुखर हस्तांतरण कर रहा था।

खेती के संबंधित क्षेत्र में प्रदान की गई साइरन बजना पूर्व रेंजर नेपाली सेना और रेक्टर निकाय समेत व्यवस्था है। इन्हीं में से अपने जनपद पहचान तत्काल घटनाएं शर्मा दुख सहज मीना जहरीला ठाकुर नगर पालिका सा लखनपुर का स्थानीय प्रभा कुमारी चौधरी सूचना पठाइए सायन घोषणा और समर्पित निकाय जहरीला कपिला भारतीय राष्ट्रीय निकुंज संरक्षण अधिकारी एवं सूचना अधिकारी महेश मेपाने प्राविधिक भारतीय मानव जंतु बंधा न्यूनीकरण कर सहज मिला बोलेगा भरे जंतु बारे समय जानकारी करना व उद्धार तथा व्यवस्थापन व सहजीकरण करना उद्देश्य में जन्म के लिए ई प्रविधि स्थानीय सुरक्षा और भरे जंतु संरक्षण में सहयोग अपेक्षा रहेगी।

0: जैसे एक रजिस्ट्रेशन प्रणाली कानून को प्रक्रिया पड़ो जलवायु सरकार विषय विश्व समुदाय को ध्यान आकर्षण कराने संसदीय समिति को आग्रह
1: पानी को आवश्यकता सिंचाई प्रसारण और जमीन निर्माण उपस्थित संयोजन भाई परम्परागत विधि व्यवस्थापन में प्रमुख चुनौती
0: विश्व खेलकूद का विजेता

0: సభలో జరిగిన రాష్ట్రీయ మహిళా ఆయోగ్ కు హెల్ప్లైన్ నంబర్
1: बाल संरक्षण तथा सहायक का लागे बाल हेल्पलाइन 10-9-8 तथा बाल बालिका घोष तथा समन्वय केन्द्र 104 में संपर्क गर्नुहोस्।
0: भारत देश विघटन तथा विशाल प्रसार को संकास्पद गतिविधि बारे जानकारी दिन भारत देश विघटन अनुसंधान ब्यूरो को हेल्पलाइन नंबर 1177 में संपर्क गर्नुहोस्।

0: समान चुप न मौसम डॉक्टर खबर करो
1: महिला नाथी उन्हें हिंसा बारे जानकारी दिन राष्ट्रीय महिला आयोग को हेल्पलाइन नंबर 1145 में संपर्क करना
0: बाल संरक्षण तथा सहयोग के लिए